और ये और यार ये एक कहते हैं मुझको राजा, अरे बजा दे, ये बजा दे प्यारे तू बाजा।